जी मेरे आंखों में भी पानी आ गया क्योंकि ये जो महफिल आज हुई बहुत बहुत ही सक्सेसफुल हुई और मैसेज आया है अस्सलाम वालेकुम लेडीज मौलूद वाज ब्यूटीफुल माशाल्लाह अल्लाह मस्ट ग्रांट रिहाना भाभी रोई का कंप्लीट शिफा और ये मैसेज आया हमारे प्यारी हलीमा की तरफ से और मैंने दो नाम लेना भूल गई हसन और तस्नीम का जी ये भी हसन साहब बेटे हैं रिहाना और अब्दुल अजीज रोईकर के और तस्नीम उनकी बहू तो माजरत चाहती हूँ और एक बहुत ही प्यारा मैसेज आया है हमारी प्यारी बहुत सी प्यारी दोस्त तस्लीमा की तरफ से जो कहती है माय डियरेस्ट आंटी रिहाना एज आई रिफ्लेक्ट ऑन अनदर ब्यूटीफुल मौलूद माय हार्ट इज फिल्ड विद इमेंस ग्रेटिट्यूड फॉर द ब्लेसिंग इट हैज बीन टू बी पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ लव रिमेम्बरेंस एंड डिवोशन ओवर द इयर्स इन अ लाइफ दैट इज ऑफन फिल्ड विद मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू मीट पीपल फ्रॉम ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ देयर रिमेन्स समथिंग ट्रूली यूनिक एंड स्पेशल अबाउट द एक्लोन लेडीज महफिल मौलूद There's a warmth, a sincerity, and a love that cannot be replicated. It is a gathering that my heart always looks forward to, and one that I could never say no to. This is because it is more than an event, but it is a circle of love for our Prophet Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nurtured through your beautiful example, your leadership, and your unwavering dedication. Main fir se kahungi, unwavering dedication, kyunki aajkal waqt bahut mehenga ho chuka hai. और इनकी पूरी फैमिली ये महफिल सजाने में इस तरह लग जाती है कि वो अपने टाइम की भी परवाह नहीं करते हैं वी आस अल्लाह सुबहान ताला टू कंटिन्यू ब्लेसिंग अस विद योर मुबारक कंपनी योर गाइडेंस एंड योर लव फॉर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मे वी लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ पर्पस एंड डिवोशन दैट यू हैव शोन एंड मे अल्लाह अलाउ अस एंड बिलव्ड फैमिली टू कंटिन्यू वॉकिंग दिस पाथ ऑफ लव एंड सर्विस आई ऑलरेडी लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मौलूद इंशाल्लाह एंड प्रे दैट वी आर वंस अगेन गैदर्ड टुगेदर अंडर योर Blessed leadership sharing in the noor and barakah of this beautiful celebration. May Allah preserve you, honor you, and surround you with His endless mercy. Ameen. Aur Rehana Babi, meri bhi khas duaen aapke liye. Allah Taala aapko sehat de, tandrusti de, aur aapka saaya hamesha aapke bachchon pe rakhe. Ameen. To agla kaya hai, noor wala Mustafa aa gaya.

जी हाँ जी हाँ, ये थे इस्माइल ताज और ये हमने स्पेशली प्ले किया हमारे जमाल साहब और मुमताज के लिए। ये इंशाल्लाह मेरी दुआ है जमाल साहब और मुमताज अप्पा आप जल्द से जल्द मक्के मदीने पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अगला कलाम ये है।

में दिया मिलाए गए। हम उनकी बहुत सारी सुन्नतें हैं और एक खास सुन्नत है सबसे मिलजुल के रहना और एक दूसरे से प्यार करना। अगला कलाम है माँ के पर, देखो मेरी माँ ने मुझे क्या दिया है।

0: बेशक बेशक, बहुत ही खूबसूरत कलाम, बहुत सारे लोगों ने ये ट्रैक एंजॉय किया, आंटी गौरी और सकीना आपा और बसंती और अजीज आपा, काफ़ी लोगों ने ये ट्रैक पसंद किया। जैसे हम मौलूद तो मनाते हैं लेकिन नबी के सुन्नतों का हम खात्मा कर देते हैं, ताल्लुकात तोड़ देते हैं हमारे खुद रिश्तेदारों से, दोस्तों से, और ये ज़िंदगी है, ये हकीकत है। मैसेज आया है हमारी अजीज़ा आपा की तरफ से, जो कहती है शी वॉन्ट्स टू सेंड अ बिलेटेड बर्थडे मैसेज टू डॉक्टर रफीक अब्बास, मे यू स्टे द वंडरफुल बीइंग यू आर, वी इन क्रेवन बी वुड लाइक्स टू एक्सप्रेस आवर सिंसियर विशेस। इट कम्स फ्रॉम अजीज़ा खाला फुप्पा एंड चिल्ड्रन। एंड डॉक्टर अब्बास की जो इस्लामिक सालगिरह है वो है 12 रबीउल अव्वल, और मेरे भाई की भी मोहम्मद अली की, इनकी सालगिरह 12 रबीउल अव्वल को हुई है। तो अल्लाह ताला इनको हर तरह से नवाजे, खुशियों से, रोज़ी रिज़्क से, इनका साया हमेशा उनके बच्चों पे रखे और हमेशा आबाद रखे। तो अगला कलाम है थकी हुई रूह।
1: जब दुनिया की राहों में कदम थक जाते हैं और रूह आराम मांगती है, तब तेरा जिक्र ही इस थकी हुई रूह

बेशक थकी हुई रूह जिस तरह के हालात आजकल इस दुनिया में हैं, नफसा नफसी के दौर में जिस हम गुजर रहे हैं, इंसानियत और मोहब्बत का जनाजा निकल रहा है और दुश्मनी नफरत हसद जलन ये हमारे दिलों में आजकल, अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे और ईमान पे खात्मा करें। मैसेज आया है मेरी प्यारी दोस्त शायदा की तरफ से जो कहती है, माशाल्लाह माय डियरेस्ट प्रेजेंटर यू हैव अमेजिंग स्ट्रेंथ माशाल्लाह फ्रॉम बीइंग सच अ ग्रेसफुल एमसी एट द एक्लोन लेडीज महफिल टू प्लेइंग दीज ब्यूटिफुल ट्रैक्स सो परफेक्टली, यू डिड एवरीथिंग विद सो मच लव एंड क्लास, मे अल्लाह सुबहान तआला ब्लेस यू एंड इंक्रीज यू इन स्ट्रेंथ नूर एंड गुडनेस आमीन। एंड एक्लोन महफिल आई मीन ओरिएंटल लेडीज कल्चरल क्लब की तरफ से, ओरिएंटल लेडीज कल्चरल क्लब की तरफ से मौलूद नबी की दावत आई है हमारे शायद आबा की तरफ से जो कहती है, ओरिएंटल लेडीज क्लब कॉर्डली इनवाइट आर लवली लेडीज टू जॉइन अस फॉर द मौलूद नबी प्रोग्राम, अ मॉर्निंग ऑफ जिक्र अदकार कसीदा नात एंड तकरीर, डेट इज 3 सितंबर 2026, 21 रबीउल अव्वल 1448, वेन्यू मस्जिदुल कुद्स केत्सल में सुबह 9:30 बजे। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप शायद पाकर 0844917866 या तो फिर फरीदा अहमद 0844525974 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यह दावत ओरिएंटल लेडीज़ कल्चरल क्लब आपके लिए मौलूद नबी का प्रोग्राम है, मॉर्निंग ऑफ जिक्र अस्कार कसीदा नात और तकरीर, और ये हो रहा है 3 सितंबर 2026, 21 रबीउल अव्वल 1448 मस्जिदुल कुद्स गेट्सविल में सुबह 9:30 बजे। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो शायदा पाकर 0844917866 और फरीदा अहमद 0844525974 पे, और फिर नियाज विल बी सर्व्ड आफ्टर जहर सला। जजाकल्लाह खैर शायदा पा। और अगला कलाम है, हम बढ़ रहे हैं रबीउल आखिर महीने की तरफ, तो अगला कलाम अल्ताफ राजा की आवाज में, या गौस मेरी कश्ती।

ये थे अल्ताफ राजा साहब, या गौस मेरी कश्ती तूफान से बचा लेना। अगला कलाम ताहिर चिश्ती साहब की आवाज में, यहाँ भी रसूल वहाँ भी रसूल।

0: उदास लगता है। नवाबंदर की जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, यूनुस भाई सभी से तवज्जो।
1: मुझे तो चांद फलक पर उदास लगता है,
0: हसीन शाम का मंजर उदास लगता है।

लग पर उदास लगता है, हसीन शाम का मंजर उदास लगता है, सुकून मिलता नहीं रूह को

0: मैं क्या चाहता हूँ। भाई दोस्तों, तवज्जो नहीं दे रहे हैं आप। मिसरे अगर जाया होंगे तो मजा नहीं आएगा।
1: हेलो,
0: कोई मुझसे पूछे मैं क्या चाहता हूँ कि ममता की ठंडी हवा चाहता हूँ।
1: सुभान अल्लाह।
0: यह उम्र भर की कमाई नसीम, मैं बस बूढ़ी माँ की